0: जाता है और इस 11 में बतला रहे हैं कि स्थिरायात्पद भक्ति आपकी स्थिर भक्ति किया जाए तो सब कुछ मिल जाता, जैसे कि रावण ने तीनों लोकों को जीत लिया बिना किसी संग्राम किए। जब मनुष्य भगवान की उपासना करता है, भक्ति करता है, तो कठिन से कठिन परिस्थितियां आती हैं। अक्सर समस्याएं तभी आती जब आप एकाग्र होकर भगवान का भजन करते हैं, उस समय मन में अनेक प्रकार की कामना होती है। जब आप कोई काम करते हैं तब तो मन उसमें लगा होता है, पर जब भगवान का ध्यान करना हो या जप करने लगते हैं, उपासना करते हैं, तो मन में न जाने कैसी कैसी कामना स्फुरित होती है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। ये जो कामना है, ये कामना बैठती है सिर पर। ये कामना जो है ना, महारानी है। ये छोटी मोटी जगह नीचे नहीं बैठती है, ये सीधा जो है ना, कल विवेक चूड़ामणि प्रसंग आया था बॉम्बे स्पिरिचुअल सेंटर में, कि बिल्कुल सिर पर बैठती है। जो सिर हमेशा ऊपर रखता है ना, सबसे पहले उस अभिमानी के सिर पर कामना बैठ जाएगी। जैसे अभिमान हुआ तुरंत कामना बैठ जाती है, और कामना बैठने के बाद भी मनुष्य को नचाती है, अब बंदर की तरह नाचते रहता है। और आप अपने सिर को जैसे रावण ने भगवान शंकर के चरणों में समर्पित कर दिया, भेंट कर दिया, ऐसे ही समर्पित कर देंगे तो जिस चरण पर भगवान के चरण कमल विराजमान हो जाएंगे, उस जो है ना सिर पर कामना नहीं आ सकती है। कोई मेहमान आपके घर में आए और आने के बाद आप सत्कार ना करो, अपने काम में लगे रहो, बात भी ना करो, एक बार दो बार तीन बार तो आएगा, पर यदि आप सत्कार नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, उससे मिलेंगे नहीं, तो जीवन भर दोबारा नहीं आएगा। सोचेगा मैं घर में जाता हूं, कोई लोग मुझे पूछते भी नहीं, आदर भी नहीं करते, तो क्यों जाना। ऐसे ही जब कामना आए ना, जब भगवान की भक्ति करे कामना आए, तो आप उस विषय का चिंतन ही न करें। जब कामना रूपी महारानी का, विषय चिंतन रूपी अतिथि का आप आतिथ्य नहीं करेंगे, स्वागत नहीं करेंगे, वो बेचारा दो बार तीन बार चार बार आने के बाद आना बंद कर देगा, बोलेगा कि ये तो अपने आप में मशगूल है, हमारा यहां कोई काम नहीं है। तो ये कामना तो ही परेशान करती जब हम उपासना ही नहीं करते हैं। उपासना जब करेंगे तो हमारा चरण जब भगवान के चरणों में झुक जाता है, और इस सिर पर जब भगवान के चरण पड़ते हैं, तो फिर कामना परेशान नहीं करती है। तो स्थिर भक्ति का प्रभाव महिमा बतलाया कि रावण ने किस प्रकार से तीनों लोकों पर साम्राज्य स्थापित किया था। यहां पर बलि शब्द का प्रयोग किया है। बलि का अर्थ होता है भेंट, समर्पण। पर बलि का अर्थ कई जगह लोग जो है पशु बलि भी करते हैं, जो अवैदिक है। यहां जो रावण ने भगवान शंकर को 10 सिर चढ़ाया, इसका दार्शनिक तात्पर्य है मसूदन सरस्वती, जिन्होंने किसी महिमा पर बड़ा सुंदर एक टीका लिखी है। वह टीका हरिहर पक्षीय है, मतलब भगवान शंकर का भी वर्णन है और भगवान विष्णु का भी, दोनों देवताओं को लक्ष्य करके मसूदन सरस्वती ने विष्णु पक्षीय और शिव पक्षीय व्याख्यान बड़ा सुंदर लिखा है। उसमें वे कहते हैं कि जो 10 सिर है, ये जो हमारे 10 इंद्रियां हैं, आंख नाक कान ये जीभ है, इतनी 10 इंद्रियां हैं, ये 10 इंद्रियां दशास्य हैं। आस शब्द का अर्थ होता है मुख। यदि आप व्याकरण से विचार करें ना, तो आस शब्द का अर्थ होता है मुख, मतलब जिसके द्वारा आहार ग्रहण किया जाए उसका नाम मुख है। तो जैसे आप मुख से भोजन करते हैं, वैसे आंख का भोजन रूप है, कान का शब्द है, नाक का गंध है, त्वचा का स्पर्श है। ये जो 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियों को रावण ने भगवान शंकर के चरणों में तत्परता से समर्पित कर दिया, यही समझो कि 10 सिर का ये बलि है, भेंट है, समर्पण है। परंतु रावण ने अपने मन को समर्पित नहीं किया था। रावण ने मन को समर्पित नहीं किया, इसलिए मन में कामना हुई, और कामनाओं के कारण से फिर रावण का भगवान राम के द्वारा संहार होता है। तो यहां पर तो केवल इतना ही बताया कि किस प्रकार स्थिर भक्ति से रावण ने त्रेता में भगवान शंकर को प्रसन्न किया। हम लोग भी स्थिर भक्ति कर सकते हैं, परंतु व्यवहारिक जगत में स्थिर भक्ति करने के लिए तो बहुत से कारण होते हैं। एक तो सबसे बड़ी लोभ वृत्ति है। जैसे आप अपने कपड़े को सीने के लिए देते हैं दर्जी को, दर्जी को देते हैं, दर्जी कहता है एक सप्ताह के बाद आना। जब आप एक सप्ताह के बाद जाते हैं तो क्या बोलता है, तीन दिन रोज के बाद आना। तीन रोज के बाद गए तो दरवाजा बंद कहीं और गया, होता है कि नहीं। फिर आप दस रोज के बाद जाओ, बोले क्या करे सर, अमुक काम हो गया था कर नहीं पाया। यदि आप स्थिर हैं, सावधान हैं ना, सजग हैं, उसने कहा एक हफ्ता, बस दो दिन के बाद ही पहुंच जाओ। पूछो कि भाई तूने जो है कपड़ा काटा कि नहीं काटा, तुरंत उठाए काटना शुरू कर देगा। फिर जो है एक रोज के बाद पहुंच जाओ, बोले कितना काम हुआ, जो सात रोज में होना है वो पांच रोज में करके दे देगा, क्योंकि आप उसके सर पर स्थिर हो गए, खड़े हो गए ना। ऐसे ही तत्परता होनी चाहिए। जब घर में माताएं भोजन बनाती हैं तो बच्चे पूछते हैं कि मां अभी कितना देर है, तो मां को हर काम छोड़ के पहले भोजन तैयार करना पड़ता है, क्योंकि बेटा कहता है कि मुझे सात बजे स्कूल जाना है, अभी छह बजे है, तैयार हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे यहां पर जो है ना कोई ऐसा डंडा लेके खड़ा हो, जैसे दर्जी के ऊपर, या घर में बेटे होते हैं, मां को मजबूरन सात के पहले तैयार करना पड़ता है। पर यहां तो जो भगवान है वो आपके ऊपर डंडे लेके खड़े नहीं है, मनुष्य योनि दे दिया आपको, सौ वर्ष के राजा बना दिया, आप कुछ भी करने में स्वतंत्र हैं। परंतु ज्ञान विहीन पशु भी समान, आहार निद्रा भयमय थुनंच, समानमेतम पशु भी नारायणम। आहार भय निद्रा विषयानंद जैसा मनुष्य को उपलब्ध है वैसा पशु को उपलब्ध है। बस अंतर है केवल विवेक का, पशु के अंदर विवेक नहीं। यदि हमारा जीवन विवेक न हो तो हमारा जीवन भी पशु से बदतर है। इसलिए पुष्पदंताचार्य कहते हैं कि यदि आपको भगवान शंकर को प्रसन्न करना है, स्थिर भक्ति चाहिए। स्थिर मतलब तत्परता होनी चाहिए। तत्परता बोलते हैं कि ऐसी ललक हो कि हमें मतलब कि उसके बिना चयन न हो। जैसे कि धनार्थी धन को इतना महत्व देता है,
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 2, Sukta 24.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

दानायामे वर्चोदा वर्चा से पवस्व वाचे मे वर्चोदा वर्चा से पवस्व क्रतु दक्षाभ्याम मे वर्चोदा वर्चा से पवस्व श्रोत्राय मे वर्चोदा वर्चा से पवस्व चक्षुर्भ्याम मे वर्चोदसौ वर्चा से पवेथाम्

अग्निराग्निध्र इन्द्रो ओहविर्धाने अथर्वोपावह्रियमानो विश्वे देवा अज्ञशुषुण्य

आदिगुरु शंकराचार्य जी दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में ज्ञान स्वरूप भगवान ज्ञानमूर्ति गुरुमूर्ति भगवान शिव जिसका नाम दक्षिणामूर्ति है, उन भगवान दक्षिणामूर्ति शिव के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण के माध्यम से स्तुति करते हुए सारे दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत करते हैं। प्रत्यविज्ञा इस पर चर्चा चल रही है तो पूर्व पक्ष ने प्रश्न किया कि पहले अनुभव किए हुए प्रत्यक्ष अनुभव किए हुए पदार्थ को उसी को कालांतर में फिर प्रत्यक्ष करता है देशांतर कालांतर में, तब उसके बीच में यह वही वस्तु है ये जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को प्रत्यविज्ञा कहते हैं, ये सिद्धांत है। इस पर उसने प्रश्न किया तब ऐसा है तो जीव अनेक जन्मों से जन्म लेता रहा है और मरता रहा है तो हर जन्म में उसने किसी न किसी पदार्थों का अनुभव किया है, कालांतर में फिर जन्म लेता है तो उन पदार्थों का अनुभव तो करता ही है, तो वहां पहले जन्मों का और इस जन्म के पदार्थों के बीच में जब इस जन्म के पदार्थों को प्रत्यक्ष देखता है तो वहां प्रतिविज्ञा क्यों नहीं बनती है, ये पदार्थ मैंने पिछले जन्म में देखा था, ऐसी प्रतिविज्ञा क्यों नहीं बनती है। यदि यह नियम है तो सर्वत्र ये प्रतिविज्ञा बननी चाहिए, ये पूर्व पक्ष का एक शंका है। इसके उत्तर में कहते हैं कि देखो ये प्रतिविज्ञा जो है वह देश काल और परिस्थिति अनुसार यह प्रतिविज्ञा होती रहती है। प्रतिविज्ञा जन्मांतर में सर्वथा नष्ट हो जाता ये बात नहीं है। देखो यदि ये प्रतिविज्ञा न होती, पिछले जन्म का और इस जन्म के संगति मिलाने वाला जो प्रतिविज्ञा बीच में न होती तो ये प्रत्यक्ष देखने में आता है कि बच्चा पशु का भी बच्चा जब वह पैदा होता है मां के गर्भ से वह पैदा होता है तो पैदा होते ही उसको भूख लगने लगती है और जैसे उसको भूख लगने लगती है तो वह अपनी मां के स्तन को खोजने लगता है, उसको किसने सिखाया, कौन बताएगा कि तेरी मां यह है, कौन बताएगा कि तेरी मां की स्तन यहां पर है, कौन बताएगा कि यही स्तन है यहीं से दूध आता है। ये प्रतिविज्ञा काम कर रही है उस समय भी, पहले जन्म में इष्ट साधनता उसको उसमें बोध था और वही प्रतिविज्ञा होने के कारण जन्म लेते ही वह खड़े होने की कोशिश करता है, कोई सिखाना नहीं पड़ता है खड़े होना क्योंकि पहले जन्म में वो खड़ा हुआ था, उसकी स्मृति है और उसी को अब खड़े होने के लिए वह कोशिश करता है। तो ये पहले जन्म के और इस जन्म के बीच में प्रतिविज्ञा न होती तो मुझे अब खड़े होना चाहिए तो खड़े होने की कोशिश न करता, प्रयत्न नहीं करता और खड़े होने की कोशिश करता है खड़ा हो जाता है। इसी तरह जब उसको भूख लगती है तो वह मां के स्तन को खोजता है और खोजते खोजते उसको प्राप्त हो जाता है, ये प्रतिविज्ञा काम कर रही है। नहीं तो वह पशु है, कोई किसको समझाएगा नहीं उसको कि कौन समझाएगा उसको कि तुझे भूख लग रही है तो मां का स्तन पान कर। हमारे बच्चे भी जब भूख लगता है उनको बचपन पैदा होते हैं जब भूख लगने लगता है तो सबसे पहले अपनी ही उंगली चूसने लग जाते हैं क्योंकि वो प्रतिविज्ञा काम कर रही है। पहले जन्म में उसी तरह उसने निप्पल चूस कर ही अपने पेट को अपने क्षुधा को निवृत्त किया था उस समय, तब अभी भी वह कोशिश करता है वह प्राप्त नहीं होता है तो उंगली चूसने लग जाता है।
ये सब कुछ प्रतिविज्ञा का खेल है। पूर्व जन्मान्यभूतार्थ स्मरणान मृगशावकः जननी स्तन्यपानाय स्वयमेव प्रवर्तते। किसी की उसको प्रवृत्त कराने वाला कोई न हो तो भी वो अपने आप ही जननी स्तन्यपान के लिए जब वो प्रवृत्त होता है तो कौन वो प्रवृत्त करा रहा है, तो वही प्रतिविज्ञा। अन्यथा ये व्यवहार दिखने में न आता। तस्मा निश्चीयते स्थायी आत्मा देहांतरे स्वपि, तो इससे ये सिद्ध होता है कि आत्मा, एक ही आत्मा देहांतर में भी वो आत्मा स्थायी है, बदलता नहीं। देह बदल जाने पर भी आत्मा बदलता नहीं। यदि आत्मा बदल जाता तो फिर प्रतिविज्ञा किसको होती? अनुभव करता दूसरा और स्मरण करता दूसरा, ये कहीं भी देखने में नहीं आया है। जिसने अनुभव किया है उसी को स्मरण होता है। और इसीलिए कल इसका स्पष्ट किया था हमने, प्रत्यक्ष में और प्रतिविज्ञा में अंतर है। पहली बार पदार्थ देखता है और उस पदार्थ का जो ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। वही पदार्थ देशांतर और कालांतर में देखता है और उसके देखते ही, हालांकि पहले उसको प्रत्यक्ष ही हो रहा है, उस पदार्थ को जो दोबारे देखता है उस समय भी उसको प्रत्यक्ष ही हो रहा है, इंद्रिय से ही वो गृहीत हो रहे हैं, फिर भी दोबारे जब उस पदार्थ को देखता है तो उसके बीच में एक और स्मृति जगती है, अरे इस पदार्थ को तो मैंने पहले फलाने जगह देखा था। ये जो स्मृति है इसको प्रतिविज्ञा कहते हैं। तब स्मृति को प्रतिविज्ञा क्यों कहें? खाली स्मृति ही कह दें तो? स्मृति में और प्रतिविज्ञा में यह अंतर होता है कि स्मृति में पूर्व दृष्ट पदार्थ नष्ट भी हो जावे तो भी स्मृति होती है, और कालांतर में वह प्रत्यक्ष दृष्ट न भी हो जाए तो भी स्मृति होती है। जैसे मरे हुए का स्मरण होता है, बाहर दिखे हुए पदार्थों का अंदर बैठे बैठे स्मरण होता है, यह स्मृति अलग चीज है और वो स्मृति अलग चीज है जो पहले दिखे हुए व्यक्ति या वस्तु को ही कालांतर देशांतर में उसको देख लेता है, और देखने के बाद ये उसको स्मरण होता है कि ये पदार्थ वही है। ये प्रतिविज्ञा है, ये स्मरण नहीं है। हालांकि वो भी स्मृति के कोटि में है, लेकिन ये प्रतिविज्ञा है। ये स्मृति, ये अंतर है स्मृति में और प्रतिविज्ञा में। और ये भी बताया, तस्मा निश्चीयते आत्मा स्थायी आत्मा देहांतरे स्वपि स्मृतिम बिना न घटते स्तन्यपानम शिशोर यतः। पूर्वत्र अनुभवे काले स्मृति काले परत्र सन। प्रतिविज्ञा में पदार्थों के बारे में ये होना जरूरी है, पहले भी वो पदार्थ प्रत्यक्ष अनुभव में आना चाहिए, प्रतिविज्ञा काल में भी वो पदार्थ प्रत्यक्ष में आना चाहिए, और उन दोनों काल में प्रत्यक्ष होते समय बीच में जो स्मृति वो प्रतिविज्ञा। पूर्वत्र अनुभवे काले स्मृति काले परत्र सन आत्मा संस्कार रूपेण स्मरत्यर्थम स्वनिष्ठितम। आत्मा जो साक्षी है, देखने वाला है, वह स्वनिष्ठितम संस्कार जम, क्योंकि संस्कार पदार्थ निष्ठ नहीं होते, संस्कार

किसी देश और काल में बैठा है, उस पदार्थ का संस्कार आत्मा में आश्रित है और आत्मा आश्रित पदार्थ संस्कार को ही वह जब देखता है तब उस समय प्रत्यभिज्ञा हो जाती है। प्रत्यभिज्ञेति भावानाम स्मृतिश्चेद अभिधीयते आत्मस्थैर्य प्रमाणत्वम स्मृतिश्च प्राप्नुयात् कथम। आत्मा की स्थिरता न हो, एक रूपता न हो, तब फिर ये प्रतिविज्ञा नहीं होगी और स्मृति भी नहीं होगी। और इसी से सिद्ध होता है कि आत्मा एक है। स्मृतो प्रकाशो न अर्थस्य न चाप्यर्थस्य निश्चय न चाप्यर्थानुभवा यो अंगुल्योरिव संभवेत। स्मृति में इतना अंतर है, स्मृतो प्रकाशो न अर्थस्य। स्मृति में क्या होता है, केवल संस्कार का ही प्रकाश होता है, प्रकाशन होता है, साक्षी केवल संस्कार का प्रकाशन करता है, पदार्थों को प्रकाशित नहीं करता। साक्षी जब पदार्थों को प्रकाशित करने लग जाए तो फिर अनुभव हो जाएगा, स्मृति नहीं होगी। पहले जब देखा प्रत्यक्ष प्रमाण से उसने पदार्थों को प्रकाशित किया और उस पदार्थ का संस्कार आत्मा में पड़ गया, आत्मनिष्ठ हो गया संस्कार। और कालांतर में जब स्मृति होती है तो उस समय में वह दृष्टा केवल स्मृति को प्रकाशित करता है, पदार्थ को प्रकाशित नहीं करता। लेकिन यहां क्या करता है, स्मृति को भी प्रकाशित करता है और पूर्व माने पश्चातवर्ती पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। तो स्मृति और पदार्थ दोनों को जिस समय प्रकाशित करता है उस समय में प्रतिविज्ञा होती है। देख लो स्पष्ट है, अब आप कितनी समझ पा रहे हो, हमने जो समझा है वो आपको बता दिया है और आप कितनी समझ पा रहे हो ये आपके निर्भर करता है। तो हम तो ये कहते हैं कि समझ में आई, तो नहीं आई तो समझने की कोशिश करो, बस हम तो इतने कहते हैं। वेदांत का रहस्यमय प्रसंग है प्रतिविज्ञा। नानुभूति विशिष्टस्य पदार्थस्य तदंडिवत सर्वात्राप्येवमित्येवम् प्रसंगात् इति उच्चणुः। प्राक्तनानुभवे नष्टे, पहले जिस पदार्थ का अनुभव किया था अनुभवकर्ता ने, जहां भी कहीं भी जिस पदार्थ का अनुभव किया था अनुभवकर्ता ने, वह पदार्थ नष्ट हो गए। वो तो प्राक्तन अनुभवे नष्टे, तद अवस्तंभ संभवात संस्कार संज्ञात सामग्र्यात पौरुषात जायते स्मृति। और स्मृति में तो संस्कार संज्ञात सामग्र्यात, उस संस्कार को जगाने वाले सामग्रियों के द्वारा ही वो संस्कार जगते हैं, संस्कार अपने आप ही नहीं जगते हैं, परिस्थिति और साधन के माध्यम से संस्कार जगते हैं। आपके अंदर जो संस्कार हैं, आपके जो माता पिता भाई बंधु जो स्वर्गीय हो गए हैं, उनका संस्कार आपके अंदर कर है, लेकिन वो संस्कार हमेशा दृष्ट नहीं होते, हमेशा उद्बुद्ध नहीं होते। जब उनकी तिथि आती है तो फिर वो संस्कार निकलते हैं। जब कोई प्रसंग चलता है, संवाद चलता है आपस में, तब वो संस्कार जग जाते हैं। जब कहीं उसका फोटो देखते हैं तो वो संस्कार प्रकट उद्बुद्ध होते हैं। जब कभी भी कोई प्रसंग सामने उपस्थित होता है, देश काल वस्तु निमित्त इन सबों के माध्यम से वो संस्कार उद्भूत होते हैं। और ये चीज यदि सामने उपस्थित न हो तो फिर वो संस्कार कहां लुप्त हैं ये पता नहीं चलेगा, जबकि पदार्थ नष्ट हो चुके हैं, अनुभूयमान पदार्थ जबकि वो नष्ट हो चुका है, वहां केवल संस्कार मात्र रहता है। लेकिन प्रत्यभिज्ञा में पदार्थ नष्ट नहीं हो पाएगा, पदार्थ बिल्कुल

0: बिल्कुल उपस्थित होना ही चाहिए। और उसी पदार्थ जिस पदार्थ को पहले आपने देखा था वही पदार्थ वह ही आपके उस संस्कार को स्मृति को जगाने में निमित्त होता है और उस समय जो संस्कार जगता है वह फिर प्रतिविज्ञा के रूप में परिणत हो जाता है।
1: आविद्यानुभवे नष्टे तदीयं विषयं प्रति अनुभावकमात्मानं बोधयत्यनपायिनम् विषये च प्रमुषिते नष्टे चानुभवे सति स्वविश्रान्तं स्मरन्त्यर्थं देवोऽत्र मुषितस्तदा।
0: संस्कार को ग्रहण करके बैठा हुआ जो व्यक्ति है वह पदार्थ के नष्ट होने पर भी वह संस्कार का आश्रय, ध्यान देना, संस्कार जिस आश्रय में आश्रित है वह आश्रित आश्रय, संस्कारों का जो आश्रय है वह आत्मा, वह देव, वह अप्रमुषित है, वह किसी हालत में नष्ट नहीं होगा। अन्यथा तो
1: प्रमोषणम प्रमाणे प्रमात्रीणाम मायया तमसा कृतम माया विद्ये प्रभो शक्ति बानोच्चा छाया प्रभो पमे।
0: तब तो फिर वो जो अनुभव करता है वह एक ही है, नित्य है, तो फिर जिस समय अनुभव हुआ है उस समय में ये मैं अनुभव करता है, ये पदार्थ मेरे अनुभव का विषय, इस पदार्थ का अनुभव करता मैं, ये अपने को भी स्मरण करता है और पदार्थों को भी स्मरण करता है, यानी पदार्थ का भी अनुभव करता है अपना भी अनुभव करता है, स्मरण नहीं करता। जैसे अभी आप बैठे हो तो आप दो चीज कर रहे हो, एक तो मुझे देख रहे हो और ये निश्चय कर रहे हो कि ये स्वामी जी है, ये अनुभव हो रहा है। दूसरा अपने को भी आप अनुभव कर रहे हैं कि ये मैं हूं अनुभव करता, आप अपने आप को विस्मरण नहीं कर रहे, अपने आप को भी अनुभव है कि मैं यहां बैठा हूं, मैं देख रहा हूं, ये स्वामी जी वहां बैठे हैं, मेरे द्वारा देखा जा रहा है। तो आप अपने आप का भी अनुभव करते हैं और मेरा भी अनुभव करते हैं, तब ये दोनों अनुभव होता है। कालांतर में अनुभव करता आप जब नित्य हैं तो नित्य ही यह अनुभव में होता रहना चाहिए, तो कभी कभी यह अनुभव नहीं होता है कि मैं हूं कि नहीं हूं, मैं वही हूं कि दूसरा हूं, पहले जन्म में जो था वही हूं कि दूसरा हूं, वह निश्चय तो होता नहीं है। तो इसके बारे में सुरेश्वराचार्य जी ने ये प्रतिविज्ञा के बारे में ये बात विशेष कह दी है, ये ध्यान देने की बात है विचारकों को।
1: प्रमोषाणम प्रमाणे प्रमात्रीणम मायया तमसा वृतम प्रमात्री
0: प्रमाता, प्रमात्री माने प्रमाता, प्रमाण के द्वारा जिसने पदार्थों को जाना वह प्रमाता, और जो पदार्थ जाने गए वो प्रमा प्रमेय, जिसके द्वारा जाना गया प्रमाण, जिसने जाना प्रमाता, जो जाने गए वह प्रमेय। ये तीन चीज हैं, प्रमाण भी नष्ट हो जाएगा और प्रमेय भी नष्ट हो जाएंगे। प्रमाण नष्ट क्यों होगा, क्योंकि आज पदार्थ प्रत्यक्ष है, तो वह जिस पदार्थों का आपने प्रत्यक्ष देखा वो तो नष्ट हो जाएगा कालांतर में, तो पदार्थ भी प्रमेय भी नष्ट हो जाएंगे, प्रमाण भी नष्ट हो जाए, क्योंकि आज प्रत्यक्ष देखा कल प्रत्यक्ष नहीं देख रहे हैं तो प्रमाण नष्ट हो गया। प्रमाण और प्रमेय दोनों नष्ट हो जाने पर भी आप ये कहते हैं कि प्रमाता यथावत रहता है, प्रमाता नष्ट नहीं होता, बात समझिए ना। अन्यथा तो प्रमाता नित्य कैसे सिद्ध हो, प्रमाता भी नष्ट होने वाला हो गया तब तो फिर ये वो वस्तु है, ये प्रतिविज्ञा किसको होगा। तो प्रमाता रहता है क्योंकि प्रतिविज्ञा प्रमाता को ही होती है, इसलिए प्रमाता नष्ट नहीं होता। नष्ट नहीं होता है तो हमेशा ज्ञात होना चाहिए, तो हमेशा प्रकाश हमेशा ज्ञात क्यों नहीं होता प्रमाता।
2: ओम नमः शिवाय।
3: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज हिंदी स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन नायनमार पुराणम। द टाइटल इज कोटपुली नायनार पुराणम, प्रेजेंटेड बाय श्री सिंगपूर शंकर नारायणन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
1: ओम नमः शिवाय। भक्तों, अभी हम और एक दक्षिण भारतीय संत या नायनमार की कहानी सुनेंगे, जिनका नाम कोटपुलियार है। प्राचीन काल में चोल प्रदेश में तिरुनाट्य तानापुरी नामक एक गांव था। वहां कोटपुलियार नामक एक सेनानी रहते थे। उनकी अपनी निजी सेना थी। जिस राजा या सामंत को युद्ध के लिए सेना की आवश्यकता होती थी, कोटपुलियार उनकी सेवा में अपनी सेना नियुक्त कर देते थे। जो धनराशि इसे प्राप्त होती थी, उससे अपनी सेना का व्यय निकालकर बाकी जो बचे धन से धान या अन्न खरीदते थे और इसे विभिन्न देवस्थानों के लिए कोठार में जमा कर देते थे। एक बार की बात है, युद्ध के लिए प्रस्थान करने से पूर्व कोटपुलियार ने अपने गांव के मंदिर में वर्ष भर के भोग के लिए आवश्यक धान जमा करने के बाद अपने परिवारजनों को बुलाकर बोला, यह धान भगवान के भोग के लिए समर्पित है, इसके उपयोग का विचार भी कोई न करना, भगवान की शपथ है। ऐसा कहकर वे युद्ध क्षेत्र में चले गए। इस बीच उस प्रदेश में अकाल पड़ा। परिवार के लोगों ने यह विचार किया, अभी तो इस मंदिर के धान का उपयोग कर लें, जब अन्न मिलेगा तो लौटा देंगे। इस प्रकार मंदिर के भोग का धान उन्होंने ले लिया। कोटपुलियार जब युद्ध से लौटे तो उन्हें इस बात की पता चली। उन्होंने अपने सारे सगे संबंधियों को बहाना करके एक जगह एकत्रित किया और उन सब की तलवार द्वारा हत्या कर दी। उनका कहना था कि शिव के सत्व की चोरी एक घृणित अपराध है, जिसका यही दंड है। उन्होंने माँ बाप भाई बहन का भी भेद नहीं किया। एक अबोध शिशु को भी इसलिए मार डाला कि जिस माँ का उसने दूध पिया था, उसने शिव के सत्व की चोरी करके खाया था। भक्त के इस विचित्र कट्टर व्यवहार के फलस्वरूप शिव को स्वयं प्रकट होना पड़ा और उन्होंने सभी मृतकों को मोक्ष दान किया। इस कथा के मूल में मंदिर के भोग के लिए धान की व्यवस्था करने और दुरुपयोग रोकने का प्रश्न है। साधु संतों को प्रतिदिन भोजन देने के स्थान पर कोटपुलियार अन्नदान के लिए मंदिर में पर्याप्त धान का कोठार बनाकर रख देते थे। यद्यपि राज्य के मंदिरों की देखभाल, सेवादारों के पारिश्रमिक आदि देने का दायित्व राजा का था, तथापि भोग के लिए धान एकत्रित करना, उनकी रक्षा करना, दैनिक आवश्यकता के लिए कोठार में से निकालकर एक सीमित दर्ज देने का दायित्व राजा का ही होता था। यदि यह कार्य व्यवस्था पूर्वक चल रहा होता तो वर्ष भर के लिए धान का कोठार बनाने का कार्य कोटपुलियार को करने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ वर्ष पूर्व 1985 या 87 में तंजावुर में के पेरुवुडैयार मंदिर सहित अनेक देवस्थानों में भोग चढ़ाने के लिए धान की कमी हो गई थी। स्पष्ट है कि धन के दुरुपयोग और दायित्वहीनता के कारण ऐसा हुआ। कोटपुलियार के समय में भी यही स्थिति रही होगी और मंदिर की संपत्ति को लूटकर अपना पेट भरने वाले वर्ग आज की भांति उस समय भी रहा होगा। युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले भगवान की सौगंध देकर शपथ दिलाने की आवश्यकता इसी वृत्ति की जानकारी होने के कारण पड़ी होगी। भगवान की सौगंध दिलाने, वर्जित करने और स्पष्ट आदेश देने के बाद भी जब उनके अपने ही परिवार के लोगों ने मिलकर मंदिर का धान लूट कर बांट कर खा लिया, तो सैनिक वृत्ति वाले कोटपुलियार ने उन्हें उस युग के चलन के अनुसार दंडित कर दिया। आज एक व्यवस्थित शासन प्रणाली है, इसलिए संस्थाओं, मंदिरों तथा अन्य धर्मस्थलों के धन का दुरुपयोग करने वालों के लिए एक उपयुक्त उदाहरण है। इसीलिए कोटपुलियार एक उच्च कोटि के संत या शिव भक्त माने जाते हैं। ओम नमः शिवाय।
0: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम shaivam.org। ஓம் சிவாய நம. shaivam.org-இன் அன்பார்ந்த நேயர்களே, நீங்கள் கேட்கவிருப்பது சிவகீர்த்தனை. தலைப்பு சிதம்பரம் என்று ஒரு தலம். வழங்குபவர் அரியக்குடி ராமானுஜ ஐயங்கார் அவர்கள். வணக்கம். ஓம் சிவாய நம.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

दानायामे वर्चोदा वर्चा से पवस्व वाचे मे वर्चोदा वर्चा से पवस्व क्रतु दक्षाभ्याम मे वर्चोदा वर्चा से पवस्व श्रोत्राय मे वर्चोदा वर्चा से पवस्व चक्षुर्भ्याम मे वर्चोदसौ वर्चा से पवेथाम आत्मने मे वर्चोदा वर्चा

ಆದಿಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಜಿ. ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮೇ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ್ ಭಗವಾನ್ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ಜಿಸ್ಕಾ ನಾಮ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಹೈ. ಉನ್ ಭಗವಾನ್ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಶಿವಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಅವರ ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ತುತಿ ಕರ್ತೆ ಹುಯೆ ಸಾರೆ ದಾರ್ಶನಿಕ ವಿಚಾರೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಪ್ರತ್ಯವಿಜ್ಞಾ ಇಸ್ ಪರ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ ರಹಿ ಹೈ. ತೋ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಿಯ ಕಿ ಪಹಲೆ ಅನುಭವ ಕಿಯೆ ಹುಯೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವ ಕಿಯೆ ಹುಯೆ ಪದಾರ್ಥ ಕೋ ಉಸೀ ಕೋ ಕಾಲಾಂತರ ಮೇ ಫಿರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ತಾ ಹೈ ದೇಶಾಂತರ ಕಾಲಾಂತರ ಮೇ ತಬ್ ಉಸ್ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಯಹ ವಹೀ ವಸ್ತು ಹೈ ಈ ಜೊ ಜ್ಞಾನ ಹೋತಾ ಹೈ ಉಸ್ ಜ್ಞಾನ ಕೋ ಪ್ರತ್ಯವಿಜ್ಞಾ ಕಹತೆ ಹೈ ಯೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೈ. ಇಸ್ ಪರ ಉಸ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನ ಕಿಯ ತಬ ಐಸಾ ಹೈ ತೋ ಜೀವ ಅನೇಕ ಜನ್ಮೋ ಸೇ ಜನ್ಮ ಲೇತಾ ರಹಾ ಹೈ ಔರ್ ಮರ್ತಾ ರಹಾ ಹೈ. ತೋ ಹರ ಜನ್ಮ ಮೇ ಉಸ್ನೆ ಕಿಸಿ ನ ಕಿಸಿ ಪದಾರ್ಥೋ ಕಾ ಅನುಭವ ಕಿಯಾ ಹೈ. ಕಾಲಾಂತರ ಮೇ ಫಿರ್ ಜನ್ಮ ಲೇತಾ ಹೈ ತೋ ಉನ್ ಪದಾರ್ಥೋ ಕಾ ಅನುಭವ ತೋ ಕರ್ತಾ ಹೀ ಹೈ. ತೋ ವಹಾಂ ಪಹಲೆ ಜನ್ಮೋ ಕಾ ಔರ್ ಇಸ್ ಜನ್ಮ ಕೇ ಪದಾರ್ಥೋ ಕೇ ಬೀಚ್ ಮೇ ಜಬ್ ಇಸ್ ಜನ್ಮ ಕೇ ಪದಾರ್ಥೋ ಕೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇಖ್ತಾ ಹೈ ತೋ ವಹಾಂ ಪ್ರತ್ಯವಿಜ್ಞಾ ಕ್ಯೂ ನಹೀಂ ಬನ್ತಿ ಹೈ. ಯೇ ಪದಾರ್ಥ ಮೈನೆ ಪಿಛಲೆ ಜನ್ಮ ಮೇ ದೇಖಾ ಥಾ ಐಸಿ ಪ್ರತಿವಿಜ್ಞಾ ಕ್ಯೂ ನಹೀಂ ಬನ್ತಿ ಹೈ. ಯದಿ ಯ ನಿಯಮ ಹೇ ತೋ ಸರ್ವತ್ರ ಯ ಪ್ರತಿವಿಜ್ಞಾ ಬನ್ನಿ ಚಾಹಿಯೆ. ಯ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಕಾ ಏಕ ಶಂಕಾ ಹೈ. ಇಸ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಮೇ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ದೇಖೋ ಯ ಪ್ರತಿವಿಜ್ಞಾ ಜೊ ಹೈ ವಹ ದೇಶ ಕಾಲ ಔರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಸಾರ ಯ ಪ್ರತಿವಿಜ್ಞಾ ಹೋತಿ ರಹತಿ ಹೈ. ಪ್ರತಿವಿಜ್ಞಾ ಜನ್ಮಾಂತರ ಮೇ ಸರ್ವಥಾ ನಷ್ಟ ಹೋ ಜಾತಾ ಯ ಬಾತ್ ನಹೀ ಹೈ. ದೇಖೋ ಯದಿ ಯ ಪ್ರತಿವಿಜ್ಞಾ ನ ಹೋತಿ ಪಿಛಲೆ ಜನ್ಮ ಕಾ ಔರ್ ಇಸ್ ಜನ್ಮ ಕೆ ಸಂಗತಿ ಮಿಲಾನೆ ವಾಲಾ ಜೊ ಪ್ರತಿವಿಜ್ಞಾ ಬೀಚ್ ಮೇ ನ ಹೋತಿ ತೋ ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇಖನೆ ಮೇ ಆತಾ ಹೈ ಕಿ ಬಚ್ಚಾ ಪಶು ಕಾ ಭೀ ಬಚ್ಚಾ ಜಬ್ ವಹ ಪೈದಾ ಹೋತಾ ಹೈ ಮಾ ಕೆ ಗರ್ಭ ಸೇ ವಹ ಪೈದಾ ಹೋತಾ ಹೈ ತಬ ಪೈದಾ ಹೋತೆ ಹೀ ಉಸ್ಕೋ ಭೂಖ ಲಗ್ನೆ ಲಗ್ತಿ ಹೈ ಔರ್ ಜೈಸೆ ಉಸ್ಕೋ ಭೂಖ ಲಗ್ನೆ ಲಗ್ತಿ ಹೈ ತೋ ವಹ ಅಪ್ನೆ ಮಾ ಕೆ ಸ್ತನ್ ಕೋ ಖೋಜನೆ ಲಗ್ತಾ ಹೈ. ಉಸ್ಕೋ ಕಿಸ್ನೆ ಸಿಖಾಯಾ ಕೌನ್ ಬತಾಯೇಗಾ ಕಿ ತೇರಿ ಮಾ ಯೆ ಹೈ ಕೌನ್ ಬತಾಯೇಗಾ ಕಿ ತೇರಿ ಮಾ ಕಿ ಸ್ತನ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಹೈ ಕೌನ್ ಬತಾಯೇಗಾ ಕಿ ಯಹಿ ಸ್ತನ್ ಹೈ ಯಹಿ ಸೇ ದೂಧ ಆತಾ ಹೈ. ಯೇ ಪ್ರತಿವಿಜ್ಞಾ ಕಾಮ ಕರ್ ರಹೀ ಹೈ ಉಸ್ ಸಮಯ ಮೇ ಪಹಲೆ ಜನ್ಮ ಮೇ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನ ಥಾ ಉಸ್ಕೋ ಉಸ್ಮೇ ಬೋಧ ಥಾ ಔರ್ ವಹಿ ಪ್ರತಿವಿಜ್ಞಾ ಹೋನೆ ಕೇ ಕಾರಣ ಜನ್ಮ ಲೇತೆ ಹೀ ವಹ ಖಡೆ ಹೋದನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಕೋಯಿ ಸಿಖಾನಾ ನಹೀಂ ಪಡ್ತಾ ಹೈ ಖಡೆ ಹೋನಾ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಪಹಲೆ ಜನ್ಮ ಮೇ ವಹ ಖಡಾ ಹುವಾ ಥಾ ಉಸ್ಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಹೈ ಔರ್ ಉಸಿ ಕೋ ಅಬ್ ಖಡೆ ಹೋನೆ ಕೇ ಲಿಯೆ ವಹ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ತಾ ಹೈ. ತೋ ಯೇ ಪಹಲೆ ಜನ್ಮ ಕೇ ಔರ್ ಇಸ್ ಜನ್ಮ ಕೇ ಬೀಚ್ ಮೇ ಪ್ರತಿವಿಜ್ಞಾ ನ ಹೋತಿ ತೋ ಮುಜೆ ಅಬ್ ಖಡೆ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೇ ತೋ ಖಡೆ ಹೋನೆ ಕೇ ಕೋಶಿಶ್ ನ ಕರ್ತಾ ಪ್ರಯತ್ನ ನಹೀಂ ಕರ್ತಾ ಔರ್ ಖಡೆ ಹೋನೆ ಕೇ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಖಡಾ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ. ಇಸಿ ತರಹ ಜಬ್ ಉಸ್ಕೋ ಭೂಖ ಲಗ್ತಿ ಹೈ ತೋ ವಹ ಮಾ ಕೆ ಸ್ತನ್ ಕೋ ಖೋಜ್ತಾ ಹೈ ಔರ್ ಖೋಜ್ತೆ ಖೋಜ್ತೆ ಉಸ್ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋ ಜಾತಾ ಯೇ ಪ್ರತಿವಿಜ್ಞಾ ಕಾಮ ಕರ್ ರಹೀ ಹೈ. ನಹೀಂ ತೋ ವಹ ಪಶು ಹೈ ಕೋಯಿ ಕಿಸ್ಕೋ ಸಮಝಾಯೇಗಾ ನಹೀಂ ಉಸ್ಕೋ ಕಿ ಕೌನ್ ಸಮಝಾಯೇಗಾ ಉಸ್ಕೋ ಕಿ ತುಜೆ ಭೂಖ ಲಗ್ ರಹೀ ಹೈ ತೋ ಮಾ ಕಾ ಸ್ತನ್ ಪಾನ್ ಕರ್. ಹಮಾರೆ ಬಚ್ಚೆ ಭೀ ಜಬ್ ಭೂಖ ಲಗ್ತಾ ಹೈ ಉನ್ಕೋ ಬಚ್ಚೆ ಪೈದಾ ಹೋತೆ ಹೈ ಜಬ್ ಭೂಖ ಲಗ್ನೆ ಲಗ್ತಾ ಹೈ ತೋ ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಅಪ್ನೆ ಹೀ ಉಂಗ್ಲಿ ಚೂಸ್ನೆ ಲಗ್ ಜಾತೆ ಹೈ ಕ್ಯೂಂಕಿ ವೋ ಪ್ರತಿವಿಜ್ಞಾ ಕಾಮ ಕರ್ ರಹೀ ಹೈ. ಪಹಲೆ ಜನ್ಮ ಮೇ ಉಸಿ ತರಹ ಉಸ್ನೆ ನಿಪ್ಪಲ್ ಚೂಸ್ ಕರ್ ರಹೀ ಅಪ್ನೆ ಪೇಟ್ ಕೋ ಅಪ್ನೆ ಕ್ಷುದಾ ಕೋ ನಿವೃತ್ತ ಕಿಯಾ ಥಾ ಉಸ್ ಸಮಯ ತಬ್ ಅಭಿ ಭೀ ವೋ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ತಾ ವಹ ಪ್ರಾಪ್ತ ನಹೀಂ ಹೋತಾ ಹೈ ತೋ ಉಂಗ್ಲಿ ಚೂಸ್ನೆ ಲಗ್ ಜಾತಾ ಹೈ.
ये सब कुछ प्रतिविज्ञा का खेल है। पूर्व जन्मान्यभूतार्थ स्मरणान मृगसावकः जननी स्तन्यपानाय स्वयमेव प्रवर्तते। किसी की उसको प्रवृत्त कराने वाला कोई न हो तो भी वो अपने आप ही जननी स्तन्यपान के लिए जब वो प्रवृत्त होता है तो कौन वो प्रवृत्त करा रहा है, तो वही प्रतिविज्ञा। अन्यथा ये व्यवहार दिखने में ना आता। तस्मा निश्चीयते स्थायी आत्मा देहांतरे स्वपी, तो इससे ये सिद्ध होता है कि आत्मा, एक ही आत्मा देहांतर में भी वो आत्मा स्थायी है, बदलता नहीं। देह बदल जाने पर भी आत्मा बदलता नहीं। यदि आत्मा बदल जाता तो फिर प्रतिविज्ञा किसको होती? अनुभव करता दूसरा और स्मरण करता दूसरा, ये कहीं भी देखने में नहीं आया है। जिसने अनुभव किया है उसी को स्मरण होता है, और इसीलिए कल इसका स्पष्ट किया था हमने, प्रत्यक्ष में और प्रतिविज्ञा में अंतर है। पहली बार पदार्थ देखता है और उस पदार्थ का जो ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। वही पदार्थ देशांतर और कालांतर में देखता है और उसके देखते ही, हालांकि पहले उसको प्रत्यक्ष ही हो रहा है, उस पदार्थ को जो दोबारा देखता है उस समय भी उसको प्रत्यक्ष ही हो रहा है, इंद्रिय से ही वो गृहीत हो रहे हैं, फिर भी दोबारा जब उस पदार्थ को देखता है तो उसके बीच में एक और स्मृति जगती है, अरे इस पदार्थ को तो मैंने पहले फलाने जगह देखा था। ये जो स्मृति है इसको प्रतिविज्ञा कहते हैं। तब स्मृति को प्रतिविज्ञा क्यों कहें, खाली स्मृति ही कह दें? तो स्मृति में और प्रतिविज्ञा में यह अंतर होता है कि स्मृति में पूर्व दृष्ट पदार्थ नष्ट भी हो जावे तो भी स्मृति होती है, और कालांतर में वह प्रत्यक्ष दृष्ट न भी हो जाए तो भी स्मृति होती है। जैसे मरे हुए का स्मरण होता है, बाहर दिखे हुए पदार्थों का अंदर बैठे बैठे स्मरण होता है, यह स्मृति अलग चीज है और वो स्मृति अलग चीज है जो पहले दिखे हुए व्यक्ति या वस्तु को ही कालांतर देशांतर में उसको देख लेता है, और देखने के बाद ये उसको स्मरण होता है कि ये पदार्थ वही है। ये प्रतिविज्ञा है, ये स्मरण नहीं है। हालांकि वो भी स्मृति के कोटि में है, लेकिन ये प्रतिविज्ञा है। ये स्मृति, ये अंतर है स्मृति में और प्रतिविज्ञा में। और ये भी बताया, तस्मा निश्चीयते आत्मा स्थायी आत्मा देहांतरे स्वपि स्मृतिम बिना न घटते स्तन्यपानम शिशोर यतः। पूर्वत्र अनुभवे काले स्मृति काले परत्र सन। प्रतिविज्ञा में पदार्थों के बारे में ये होना जरूरी है, पहले भी वो पदार्थ प्रत्यक्ष अनुभव में आना चाहिए, प्रतिविज्ञा काल में भी वो पदार्थ प्रत्यक्ष में आना चाहिए, और उन दोनों काल में प्रत्यक्ष होते समय बीच में जो स्मृति वो प्रतिविज्ञा। पूर्वत्र अनुभवे काले स्मृति काले परत्र सन आत्मा संस्कार रूपेण स्मरत्यर्थम स्वनिष्ठितम। आत्मा जो साक्षी है, देखने वाला है, वह स्वनिष्ठितम संस्कार जम, क्योंकि संस्कार पदार्थनिष्ठ नहीं होते, संस्कार आत्मनिष्ठ होता है। संस्कार पदार्थों में नहीं रहता है, संस्कार आत्मा में रहते हैं, और वह जो दृष्टा है आत्मा में रहने वाला है, वो रहा हुआ पूर्व दृष्ट संस्कार का ही वह पुनः स्मरण करता है, तो उसको प्रतिविज्ञान कहेंगे। स्वनिष्ठ इस पदार्थान, अपने में आश्रित जो संस्कार पदार्थ हैं, संस्कार मात्र हैं, पदार्थ सामने है लेकिन संस्कार अंदर है, पदार्थ बहिर्निष्ठ है और संस्कार अंतर्निष्ठ है, पदार्थ किसी देश और काल में बैठा है, उस पदार्थ का संस्कार आत्मा में आश्रित है,
और आत्माश्रित पदार्थ संस्कार को ही वह जब देखता है तब उस समय प्रत्यभिज्ञा हो जाती है। प्रत्यभिज्ञेति भावानाम स्मृतिश्चेद अभिधीयते आत्मस्थैर्य प्रमाणत्वम स्मृतिश्च प्राप्नुयात् कथम। आत्मा की स्थिरता न हो, एक रूपता न हो, तब फिर ये प्रतिविज्ञा नहीं होगी और स्मृति भी नहीं होगी। और इसी से सिद्ध होता है कि आत्मा एक है। स्मृतो प्रकाशो न अर्थस्य न चाप्यर्थस्य निश्चय न चाप्यर्थानुभवा यो अंगुल्योरिव संभवेत। स्मृति में इतना अंतर है, स्मृतो प्रकाशो न अर्थस्य। स्मृति में क्या होता है, केवल संस्कार का ही प्रकाश होता है, प्रकाशन होता है, साक्षी केवल संस्कार का प्रकाशन करता है, पदार्थों को प्रकाशित नहीं करता। साक्षी जब पदार्थों को प्रकाशित करने लग जाए तो फिर अनुभव हो जाएगा, स्मृति नहीं होगी। पहले जब देखा प्रत्यक्ष प्रमाण से उसने पदार्थों को प्रकाशित किया और उस पदार्थ का संस्कार आत्मा में पड़ गया, आत्मनिष्ठ हो गया संस्कार। और कालांतर में जब स्मृति होती है तो उस समय में वह दृष्टा केवल स्मृति को प्रकाशित करता है, पदार्थ को प्रकाशित नहीं करता। लेकिन यहां क्या करता है, स्मृति को भी प्रकाशित करता है और पूर्व माने पश्चातवर्ती पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। तो स्मृति और पदार्थ दोनों को जिस समय प्रकाशित करता है उस समय में प्रतिविज्ञा होती है। देख लो स्पष्ट है, अब आप कितनी समझ पा रहे हो, हमने जो समझा है वो आपको बता दिया है और आप कितनी समझ पा रहे हो ये आपके निर्भर करता है। तो हम तो ये कहते हैं कि समझ में आई, तो नहीं आई तो समझने की कोशिश करो, बस हम तो इतने कहते हैं। वेदांत का रहस्यमय प्रसंग है प्रतिविज्ञा। नानुभूति विशिष्टस्य पदार्थस्य तदंडिवत सर्वात्राप्येवमित्येवम् प्रसंगात् इति उच्चणुः। प्राक्तनानुभवे नष्टे, पहले जिस पदार्थ का अनुभव किया था अनुभवकर्ता ने, जहां भी कहीं भी जिस पदार्थ का अनुभव किया था अनुभवकर्ता ने, वह पदार्थ नष्ट हो गए। वो तो प्राक्तना अनुभवे नष्टे, तद अवस्टम्भ संभवात संस्कार संज्ञात सामग्र्यात पौरुषात जायते स्मृति। और स्मृति में तो संस्कार संज्ञात सामग्र्यात, उस संस्कार को जगाने वाले सामग्रियों के द्वारा ही वो संस्कार जगते हैं, संस्कार अपने आप ही नहीं जगते हैं, परिस्थिति और साधन के माध्यम से संस्कार जगते हैं। आपके अंदर जो संस्कार हैं, आपके जो माता पिता भाई बंधु जो स्वर्गीय हो गए हैं, उनका संस्कार आपके अंदर कर है, लेकिन वो संस्कार हमेशा दृष्ट नहीं होते, हमेशा उद्बुद्ध नहीं होते। जब उनकी तिथि आती है तब फिर वो संस्कार निकलते हैं। जब कोई प्रसंग चलता है, संवाद चलता है आपस में, तब वो संस्कार जग जाते हैं। जब कहीं उसका फोटो देखते हैं तो वो संस्कार प्रकट उद्बुद्ध होते हैं। जब कभी भी कोई प्रसंग सामने उपस्थित होता है, देश काल वस्तु निमित्त इन सबों के माध्यम से वो संस्कार उद्भूत होते हैं। और ये चीज यदि सामने उपस्थित न हो तो फिर वो संस्कार कहां लुप्त हैं ये पता नहीं चलेगा, जबकि पदार्थ नष्ट हो चुके हैं। अनुभूयमान पदार्थ जबकि वो नष्ट हो चुका है, वहां केवल संस्कार मात्र रहता है, लेकिन प्रत्यभिज्ञा में पदार्थ नष्ट नहीं हो पाएगा। पदार्थ बिल्कुल उपस्थित होना ही चाहिए,
और उसी पदार्थ जिस पदार्थ को पहले आपने देखा था वही पदार्थ वह ही आपके उस संस्कार को स्मृति को जगाने में निमित्त होता है और उस समय जो संस्कार जगता है वह फिर प्रतिविज्ञा के रूप में परिणत हो जाता है। आविद्यानुभवे नष्टे तदीयं विषयं प्रति अनुभावकमात्मानं बोधयत्यनपायिनम् विषये च प्रमुषिते नष्टे चानुभवे सति स्वविश्रान्तं स्मरन्त्यर्थं देवोऽत्र मुषितस्तदा। संस्कार को ग्रहण करके बैठा हुआ जो व्यक्ति है वह पदार्थ के नष्ट होने पर भी वह संस्कार का आश्रय, ध्यान देना, संस्कार जिस आश्रय में आश्रित है वह आश्रित आश्रय, संस्कारों का जो आश्रय है वह आत्मा, वह देव, वह अप्रमुषित है, वो किसी हालत में नष्ट नहीं होगा। अन्यथा तो प्रमोषणम प्रमाणे प्रमात्रीणाम मायया तमसा कृतम माया विद्ये प्रभो शक्ति बानोच्चा छाया प्रभो पमे। तब तो फिर वो जो अनुभव करता है वह एक ही है, नित्य है, तो फिर जिस समय अनुभव हुआ है उस समय में ये मैं अनुभव करता, ये पदार्थ मेरे अनुभव का विषय, इस पदार्थ का अनुभव करता मैं, यह अपने को भी स्मरण करता है और पदार्थों को भी स्मरण करता है, यानी पदार्थ का भी अनुभव करता है अपना भी अनुभव करता है, स्मरण नहीं करता। जैसे अभी आप बैठे हो तो आप दो चीज कर रहे हो, एक तो मुझे देख रहे हो और ये निश्चय कर रहे हो कि ये स्वामी जी है, ये अनुभव हो रहा है। दूसरा अपने को भी आप अनुभव कर रहे हैं कि ये मैं हूं अनुभव करता, आप अपने आप को विस्मरण नहीं कर रहे, अपने आप को भी अनुभव है कि मैं यहां बैठा हूं, मैं देख रहा हूं, ये स्वामी जी वहां बैठे हैं, मेरे द्वारा देखा जा रहा है। तो आप अपने आप का भी अनुभव करते हैं और मेरा भी अनुभव करते हैं, तब ये दोनों अनुभव होता है। कालांतर में अनुभव करता आप जब नित्य हैं तो नित्य ही यह अनुभव में होता रहना चाहिए, तो कभी कभी यह अनुभव नहीं होता है कि मैं हूं कि नहीं हूं, मैं वही हूं कि दूसरा हूं, पहले जन्म में जो था वही हूं कि दूसरा हूं, वह निश्चय तो होता नहीं है। तो इसके बारे में सुरेश्वराचार्य जी ने ये प्रतिविज्ञा के बारे में ये बात विशेष कह दी है, ये ध्यान देने की बात है विचारकों को। प्रमोषाणम प्रमाणे प्रमात्रीणाम मायया तमसा वृतम प्रमात्री प्रमाता, प्रमात्री माने प्रमाता, प्रमाण के द्वारा जिसने पदार्थों को जाना वह प्रमाता,

0: पदार्थ भी प्रमेय भी नष्ट हो जाएंगे, प्रमाण भी नष्ट हो जाए, क्योंकि आज प्रत्यक्ष देखा कल प्रत्यक्ष नहीं देख रहे हैं तो प्रमाण नष्ट हो गया। प्रमाण और प्रमेय दोनों नष्ट हो जाने पर भी आप ये कहते हैं कि प्रमाता यथावत रहता है, प्रमाता नष्ट नहीं होता, बात समझिए ना। अन्यथा तो प्रमाता नित्य कैसे सिद्ध हो, प्रमाता भी नष्ट होने वाला हो गया तब तो फिर ये वो वस्तु है ये प्रतिविज्ञा किसको होगा। तो प्रमाता रहता है क्योंकि प्रतिविज्ञा प्रमाता को ही होती है, इसलिए प्रमाता नष्ट नहीं होता। नष्ट नहीं होता है तो हमेशा ज्ञात होना चाहिए, तो हमेशा प्रकाश हमेशा ज्ञात क्यों नहीं होता प्रमाता।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम shaivam.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Kotpuli Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Bhaktam, abhi hum aur ek Dakshin Bharatiya Sant ya Nayanmar ki kahani sunenge, jinka naam Kotpuliyar hai. प्राचीन काल में चोल प्रदेश में तिरुनाट्य तानकुली नामक एक गांव था। वहां कोटपुलियार नामक एक सेनानी रहते थे। उनकी अपनी निजी सेना थी। जिस राजा या सामंत को युद्ध के लिए सेना की आवश्यकता होती थी, कोटपुलियार उनकी सेवा में अपनी सेना नियुक्त कर देते थे। जो धनराशि इससे प्राप्त होती थी, उससे अपनी सेना का व्यय निकालकर बाकी जो बचे धन से धान या अन्न खरीदते थे और इसे विभिन्न देवस्थानों के लिए कोठार में जमा कर देते थे। एक बार की बात है, युद्ध के लिए प्रस्थान करने से पूर्व कोटपुलियार ने अपने गांव के मंदिर में वर्ष भर के भोग के लिए आवश्यक धान जमा करने के बाद अपने परिवारजनों को बुलाकर बोला, यह धान भगवान के भोग के लिए समर्पित है, इसके उपयोग का विचार भी कोई न करना, भगवान की शपथ है। ऐसा कहकर वे युद्ध क्षेत्र में चले गए। इस बीच उस प्रदेश में अकाल पड़ा। परिवार के लोगों ने यह विचार किया, अभी तो इस मंदिर के धान का उपयोग कर लें, जब अन्न मिलेगा तो लौटा देंगे। इस प्रकार मंदिर के भोग का धान उन्होंने ले लिया। कोटपुलियार जब युद्ध से लौटे तो उन्हें इस बात की पता चली। उन्होंने अपने सारे सगे संबंधियों को बहाना करके एक जगह एकत्रित किया और उन सबकी तलवार द्वारा हत्या कर दी। उनका कहना था कि शिव के सत्व की चोरी एक घृणित अपराध है, जिसका यही दंड है। उन्होंने माँ बाप भाई बहन का भी भेद नहीं किया। एक अबोध शिशु को भी इसलिए मार डाला कि जिस माँ का उसने दूध पिया था, उसने शिव के स्वत्व की चोरी करके खाया था। भक्त के इस विचित्र कट्टर व्यवहार के फलस्वरूप शिव को स्वयं प्रकट होना पड़ा और उन्होंने सभी मृतकों को मोक्ष दान किया। इस कथा के मूल में मंदिर के भोग के लिए धान की व्यवस्था करने और दुरुपयोग रोकने का प्रश्न है। साधु संतों को प्रतिदिन भोजन देने के स्थान पर कोटपुलियार अन्नदान के लिए मंदिर में पर्याप्त धान का कोठार बनाकर रख देते थे। यद्यपि राज्य के मंदिरों की देखभाल, सेवादारों के पारिश्रमिक आदि देने का दायित्व राजा का था, तथापि भोग के लिए धान एकत्रित करना, उनकी रक्षा करना, दैनिक आवश्यकता के लिए कोठार में से निकालकर एक सीमित दर्ज देने का दायित्व राजा का ही होता था। यदि यह कार्य व्यवस्था पूर्वक चल रहा होता तो वर्ष भर के लिए धान का कोठार बनाने का कार्य कोटपुलियार को करने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ वर्ष पूर्व 1985 या 87 में तंजावुर में के पेरुवुडयार मंदिर सहित अनेक देवस्थानों में भोग चढ़ाने के लिए धान की कमी हो गई थी। स्पष्ट है कि धन के दुरुपयोग और दायित्वहीनता के कारण ऐसा हुआ। कोटपुलियार के समय में भी यही स्थिति रही होगी और मंदिर की संपत्ति को लूटकर अपना पेट भरने वाले वर्ग नाच की भांति उस समय भी रहा होगा। युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले भगवान की सौगंध देकर शपथ दिलाने की आवश्यकता इसी वृत्ति की जानकारी होने के कारण पड़ी होगी। भगवान की सौगंध दिलाने